0: Not Show. Every Thursday from 6 till 7pm with Riddles and Mr. Lover. Immerse yourself in captivating love stories, romantic melodies and heartwarming fun. Let the music speak to your soul. Don't miss out. Every Thursday evening from 6 till 7pm.
1: Oh yeah, yeah.
2: To tune in, jump on the internet, stream live at www.alive905.com.au.
3: नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे